मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आज जो बारी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सन नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे आ। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे कट दे विच्चों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे हुए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हैं, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तो अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दियां पैड़ां बाणी दे स्टेप्स दे उते चल के। नानक अमृत मने माहे, बारी रिचुअल करदिआं करदिआं कई बारी असीं मन दी खेड़ नूं भुल जांदे आं, पर गुरु पातशाह

प्रहलाद चराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया अंत लय चढ़ाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुखता न हुई तू करता करना मैं नाही जा हो करी न हुई बलिहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहु नानक करते किया बातां जो किछ करना सो कर रहया सो दार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा किते तेरे वावन हारे किते तेरे राग परी स्यों कही है किते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते तुदनो गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या बिचारे।

रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता अपना जो तिस दी वडियाई, जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई, सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए, कीमत पाए न कहे।

प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्तासह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधो जी। सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन पहो करिया, ऊडे ऊडा वैसे कोसा। तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे। मन मह सिमरन करिया, सब निदानु दस अष्ट सिदानु। ठाकुर कर कल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए। तीरंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख इको अंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतोह जी, सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्या वह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फासी, जिन निर्भउ जिन हर निर्भउ त्याया जी। तिनका भउ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी। भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी। हर अनिक अनेक अनंता,

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे भाव है सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब पाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सहका जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सच्यार मैडा साई, जो तो पावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया। जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जानाहे सोई जन जानै, हर गुण सद ही आख वखाणै। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जानै सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवड़ै पहिले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरन जाम लाग पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ। जब तब संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राख हो शर्मा। जप तप संयम धर्म।

चरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं। कबे बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। वो रक्षा निज कर दै करिए, सब बैरन को आसंगरिए, पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। वू जो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझू कर हो रक्षा। राख लिहो मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल योगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन उपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमु बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ। ताका मूड उचारत बेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताका कृपा हन अनुमानत, महामूड कछ पेहित न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पुसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही कूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। आब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उवार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। उर्क जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहरि हो, ताके ताप तनक मैं हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट चाह छव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल पास ते ताहे उबारा।
जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठावर मोह हो सहाई।

सहाय, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। सुवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहे हम एक न जान्यो। श्री असुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, कहो तुहारो द्वार, बाहीं गहे की लाज अस हो।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सुधारो, जे को खावे जे को पुंचे, तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उड़तारो, तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पुसारो।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

के देश कैसे बातन से जाइए, पूछित वैद खात औखद न संजम सह, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइय, पूछित सुहागण कर्म है दुहागण के, हृदय भी विचार कत सेजा बुलाइए, गाये सुने आखे मीचे पाइये ना परम पद, गुर उपदेश गह जौ लौ ना कमाइए करनी जड़ी।

0: त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है, अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावन है, तप है बेमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है। जे तू इदे तो बचना है साध संगम, संगम दा अर्थ हुंदा है मिलाप, संगम दा अर्थ है जी मिलाप, फिर गुरु दे नाल मिलाप कर ला, फिर संगत नाल मिलाप कर ला, महाराज कहिंदे तेरे वस हो जाणगे, फिर तृष्णा भी तेरे वस हो जाएगी, संगत विच नाम मिल जाना है, ते जदों नाम आ गया तृष्णा बुझ हर कै नाम, फिर गुरु ने कृपा कर देनी है, तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाई, नानक उधर प्रभ शरण। ये गुरु दी रहमत वरतदी है, उच्चर है नाम नू, इन्हां नू करके रोक लेना कर।
1: दसवीं दसे द्वार जे ठाका,
0: दसवीं दा वर्त तेरा ए है, जेड़े तेरे दस दरवाजे ने ना पातशाह जी कहिंदे इन्हां नू तू वस कर लेना कर, जिवें पहला आपा बचन पढ़े दस इंद्री कर रखे वास, ठाके ठाके तो भाव इन्हां नू रोक ना कर, बार बार इन्हां नू रोक ना कर। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िया, मन चित वै बुरे आईया गुर शब्दी
1: इहो मन खोड़िया।
0: महाराज कहिंदे बार बार ठाक इनू रोक ना कर, टुक दम करारी जौ करो हाजर हजूर खुदाए, टुक टैंका टैंके नू औंकड़ कक्का, टुक टुक तो भाव रोक, किनू मन नू रोक, जदों मन रोकिया तेरे अखा रुक जाणगिया, जदों मन रुक गया तेरी जबान बोलन तो रुक जावेगी, जदों मन रुक गया तेरे कन गंदा मंदे तो रुक जानगे, तेरे हाथ रुक जानगे, तेरे पैर रुक जानगे, टुक दम करारी जौ करो, जदों शरीर तेरा रुक गया, नेत्र तेरे पासे रुक गए, फिर की होवेगा हाजर हजूर खुदाए, फिर ते तेनू जरे जरे चो रब नजर आ जाना। पातशाह जी कहिंदे तेरा दसवीं दा वरत है, ए वर्त रखना कर।
1: एकादशी एक कर जाना,
0: एकादशी दा वर्त रखना ने, महाराज कहिंदे सारियां दे विच मेरे वाहिगुरु निरंकार नू परमात्मा नू जानना कर, जले हरी थले हरी उरे हरी बने हरी गिरे हरी गोवे हरी इहा हरी उहा हरी अलेख हरी अपेख हरी जलस तू ही तलस तू ही तेथो बिना कुछ है ही नहीं है, तू ही तू ही तू ही तू जरे जरे चो तेरा तू ही दा वाज आ जावे तेनु नजर आ जावे, ये तेरा एकादशी दा वरत है।
1: द्वादशी पंच वस गत कर रख,
0: द्वादशी दा वर तेरा ए है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द वाज सुननी बारली भैड़ी गंदी वाज ओ नहीं सुननी, स्पर्श करना चमड़ी दा, शब्द स्पर्श रूप, रूप दा पुजारी नहीं बनना, शब्द स्पर्श रूप रस इंद्री दा वस जीभा दा रस, इस रस नू तू कंट्रोल करना है, क्योंकि आ दो ही काम है ना, जिस वेले धन गुरु नानक देव महाराज जंगल च मंगल लाई बैठे सन, उस वेले कलयुग आया से उन्हें बड़ा जतन किया सी मुक्त दी गल करा, उहदे जतन सारे दे सारे फेल हो गए, जदों सारे फेल हो गए नेरी लियांदी कई कुछ किया, फिर उन्हें एक अपना ऐसा रूप बना लिया जी काला धूत जिहड़ा सिर है समान नूं लगा होया, पैर पताल विच ने, एक सज्जे हथ नाल जेबा पड़ी हुई है, जेबा नूं पड़िया जबान नूं जेबा, एक हाथ नाल इंद्री पकड़ी हुई है, मरदाना नीवी पा के बैठा, गुरु नानक महाराज कह लगे मरदानिया सामने वेख नजारा, आखो सतनाम श्रे सामने नजारा वेख नजारा, मरदाना जी ने अखा खोलिया कहिंदा बाबा ये तो बड़ी बुरी बला आउंदी है, ये तो बड़ी बुरी बला आउंदी है, हनेरियां तो बच गए, झक्खड़ा तो बच गए, गड़िया तो बच गए, एदे तो नहीं बचते, महाराज कहिंदे तेनू कुछ नहीं कहिंदा, तू कह सत करतार निरंकार कोल आ गया, महाराज कहिंदे कौन है, कहिंदा जी कल जो गया, सतगुरु जी कहन लगे तू कल जो गया रूप क्यों बना के आया, कहिंदा जी जिहो जिहा मैं रूप बना के आया मैं तुहानू कल जोगी दे लक्षण दस दते ने, महाराज कहिंदे लक्षण की है, कहन लगा सचे पातशाह निरंकार जी बस आ दो चीजा दे नाल जबान दे रस नाल ते इंद्री दे रस नाल मैं कल जोगी जीवा नू लुट लवांगा, आखो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु। पातशाह जी कहिंदे इन्हां नू गुरु शब्द द्वारे वस करना कर, गुरु नू बेनती करिया कर, पातशाह एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगे हल, जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देण दुखल, हर के लोग मोको नीत डस है पटवारी। पटवारी कौन? धर्म राजा। मेनु डन मिल रहा है, हर के लोग मोको नीत डस है पटवारी। की कर ऊपर पूजा कर, मैं गुर पै पुकारिया। बामा उचिया कर दे, कहिंदे जी इन्हें आत्म समर्पण कर दिता। आम ही हुंदा ना, बावा उचिया कर दे, उचिया बावा करके गुरु नूं समर्पित हो जा, गुरु दे अगे टह जा। ऊपर पूजा कर, मैं गुर पह पुकारिया, ते गुरु दे अगे पुकार कर, बेनती कर, ते गुरु रहमत विच आ जावेगा। तिन्हों लिया उबारी, उबारी उबारी तो भाव बचा लवेगा, गुरु रख लवेगा, तेरा दसवीं दा वर्त हो जावेगा।
1: तौ नानक मन माना,
0: पातशाह जी कहिंदे फिर मन मन्या जांदा है।
1: ऐसा वर्त रहिजा पांडे,
0: हे पांडे आ गया ना, हे कर्मकांडी ब्राह्मण, एहो जिहा वर्त रखना कर जेड़ा आपां उपर गिण आए हां।
1: होर बहुत सिख क्या दीजा,
0: बारी सिख्या की दई जाना, पी इहो वर्त रखो, ए सिख्या दी लोड नहीं है।
1: पाउड़ी
0: अगे गुरुदेव जी कृपा कर देने,
1: भूपत राजे रंग राए,
0: बादशाह जी कहिंदे राजे भूपत बड़े बड़े बादशाह, रंग तो भाव भावे कोई गरीब है,
1: संच है बिख माया,
0: सारी माया कठी करन विच लगे हुए ने, चाहे गरीब है चाहे अमीर है चाहे कोई बादशाह, सारे दी दौड़ लगी हुई है।
1: कर कर हेत वधाए दे,
0: कठी कर करके होर होर मोह मोह प्रेम प्रेम करी जांदे हन,
1: पर दर्ब चुराया,
0: बस नहीं है पराया धन भी चुराउण दा, जतन कर दे दूजा भी हक, ओदा हक भी मैं ही हड़प कर जावा।
1: पुत्र कलत्र ना विसह,
0: माया दा नेम बंदे नु इना बन जांदा, पुत ते घर वाली दा भी विसाह नहीं करदा, कहिंदा ना ना उन्हां नु भेत नहीं देना, नहीं तां कम खराब हो जावेगा, उन्हां दा विश्वास नहीं करदा माया।

दुनिया सारी है, उस दी लीला ताई मन दी दुनिया सारी है, उस दी शक्ति नाली चुकदा हारी सारी है, उस दी शक्ति नाली चुकदा हारी।

कोई सुभाली जो तेरे दरियाँ दाए, चल के कोई सुभाली जो तेरे दरियाँ दाए, होके मानन माना सच्चे दिलों दियाँ दाए, होके मानन माना सच्चे

बोलना जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तीने ताप निवारण हारा दुखन ता सुख रास, ताको बिघन ना को लागे जाकी प्रभा गै अरदास। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर घर नो नितावै ताए, सब थाई हुई सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई हुई सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, नियोटियां दी ओट सच्चे पिता, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ। आप जी का कोटान कोट धनवाद है पातशाह जीओ। आप जी ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल किया है जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता तो उपरंत आप जी के स्वरूप के सुख आसन की सेवा हुई है पातशाह जीओ। सोहले साहिब जी के पाठ होए हैं, बाणी पढ़द्या तो सेवा करद्या तो आप जी की हजूरी विच विचरद्या तो हुई गलतियां भुलां की मुआफी बख्शनी, अगे वास्ते समत बख्शिश करनी। बाणी का भाव दर आई संतां दे हिरदिया ते वसाउणा, दर आई संगत की हाजरी तिल फुल भेटा दर प्रवान करने। अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बाणी सिमरन की दात बख्शिश करनी, तंदुरुस्तियां बख्शनियां, किरत कमाइया च बरकतां पाउणियां, अपने लड़ लाई रखना पातशाह जीओ। चार पहर दिन आप जी दे पाणे विच सुख नाल बतीत होया है, चार पहर रहण आप जी अपने पाणे विच बतीत करोणी। इस वेले आप जी का सुख आसन तैयार है, आप अपने आसन ते विराजमान होवो। सेवकां नूं संगतां नूं खुशियां बख्शो, अमृत वेले खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल करना, अमृत वेले दा जागना बख्शिश करना, सही प्यारे मिलना जिन्हां मिलिया आप जी का नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध,

प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नान

प्रब कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

हरी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै। हर को नाम कोट पापर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख कंधेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया। हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन परै। हर का नाम जपत निस्तरै, अनिक माया रंग तिख न बुझावै। हर का नाम जपत आघावै, जे मार गेव जात केला। तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याई। नानक गुरमुख परम गत पाईय, छूटत नहीं कोट लखबाही। नाम जपत तह पार पराही, अनिक बिघन जय आय सुंगार। हर का नाम तत्काल उदार, अनिक जून जन्म मर जाम। नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तूवे। हर का नाम कूट पाप खूवे, ऐसा नाम जपो मन रंग। नानक पाई साध कै संग, चिह मार के गन जाहि न कूसा।

जय महाभियान तपत वो काम तय हर के नाम की तुनु परछाम जा त्रिकामण तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत वर खै भगत जना की वर्तनाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध।

नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै न भंग,

नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रभ दीना। हर हर जन कै उर्स थानी, हर प्रताप जन अबर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाध नाम रस माते। आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे। पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदवसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है।

बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव मां उदास तपिसर थी वह अग्न वाय होमत प्राण कनिकसु है वर पुण दान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजुमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुट्टे गर्व गुमान मन ते उठे सोच करे दिन सरात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे जल तू वै बोधे अनीत शुद्ध का हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत से आणप जमका भो व्यापै निक जतन कर त्रिशन त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कोट पाव दरगह नहीं सिजै झूठ सुनायु पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिलनी माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जेकु मांगे साजना की सेवा लागे जेकु अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जेकु अपनी शोभा लूरे सा संगे हो मैं चूरे जेकु जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान वापस को जो जाने नीचा सो गणिये सब ते उच्चा जाका मन हुई सग

करुणा में दीन बेनती करे। नानक तुमरी कृपा तरे संग सहाय सुआवे न चीत, जो बैराई तस उपरीत बलवा के गृह पीतर वसे, अनद केल माया रंग रसे दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, काल नयावे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महा लोभ त्रोह, आहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो अपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जीव पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, उचे ते उचा भगवंत, सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हुए सुआज्ञाकारी।

मिथ्या तान धन कुटम सुभाया, मिथ्या हम मै ममता माया। मिथ्या राजोगन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती सुवस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता, मिथ्या त्रोमो अभिमान, मिथ्या पशु प्रकृत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरै, मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद। मिथ्या रसना भोजनन सुवाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन्नी पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल दे नानक हर हर नाम लये।

किसै दूर जनावत किसै बुझावत नीरा पाप सियान सगल ते रहत सब क जाने आत्म की रहत जिस भावै तिस लै लड़ लाए तांत नंतर रहा समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहं मेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै तिहाइ सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्यागत अवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जे प्रसाद तु सब को मानै मुक्ता को जस रसन बकानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जपत दरगह मान पावै नानक पत सिटी कर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल चिदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताकै जे प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ति सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्वह सवारी मन तिस प्रभु को कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई तिसै त्याई जो एक अलख है यहाँ वहाँ नानक तेरी लख है जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तिर सुंदर रूप सो प्रभु सिमर सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने कर्ण नाद जे प्रसाद पेखै विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभु त्याग और पत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तुता स्वराज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सुख प्रसन्न वसै मन सोए प्रभु दया ते मातु उत्तम हुए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हरनाथ नान किन कै कछु नहातु श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जू जू कह सुमुखता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना के चर्च कथाष्टपदी सात के संग मुखु जल होत साध संग मल सगली खोत साध के संग मिटै विमानु साध के संग प्रगटै सुज्ञान साध के संग बुझै प्रभु नीरा साध संग सब होत नवेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन पुरानी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग अगोचर मिलै साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संगोय सब कीरे साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतुं तावै साध संग स्थित मन पावै साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महापुनीत
ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਭੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਤਾਪ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਵੇ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬੜਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਹੁਤਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮੂ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਥਾਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੋਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ।

सच नाम सोई जन पाए, सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सगल सृष्ट का जेता, जी जंतर सबता कह हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ, जिस रख है किस कोई न मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस तजवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय।

दुर्लभ देह का करहु उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ, आठ पहर प्रपेको निराओ, मिटे ज्ञान बिनसय अंधेरा, सुनोपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ।

तिस जन का कोय न पहुंचन हार। सिर उपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदरत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप।

जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट नावत काल। अमर भए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक

सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसम तरमाही, चार कुंट दह दिशे समाही, तिस्ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मैं देख, सस्य अरसूर नक्षत्र मैं एक, वाणी प्रभ की सबको बोले, आप अडू न कब हूं डोले, सर्व कला करके ले खेल, बोल न पाइये गुने अमोल, सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, तारे हो स्वामी ओत पोत, गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं इहो विसास, संत जना का पेखण सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुने सुबचन, सर्व्यापी राम संग्रचन, जिन जाता तिसकी एह रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो हुए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभते सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार, अनिक कला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतर गज से आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सरभूत

आप ही सुना। आवन जानिक खेल बनाया, आज्ञाकारी की निमाया, सबके मद लिपतो रहे, जो कुछ कहना सुआ पे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते हुए सुना ही बुरा, और कहो किने कछ करा, आ भला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, पूत पूत अपन संग्राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सोजी पाए, किसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिसदा सुख हुए, आप मिलाए ले प्रभ सोए, ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का है सुआऊ, जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक

पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेख। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर कीर्तरे चिंद, आस अनित्या गोहत रंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करहु, साध संगगन सागर तरहु, हर तन के भर लिहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सास मुखज परमानंद, नरक निवार उदारू जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, सुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल ए रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लुक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहत वाजै, सुन

नाम श्रेष्ठ उत्तम नाम चार पदार्थ कमल प्रदास सब कह मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कह मन विश्राम।

नाम सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची।

तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तन देह पाणी धोतै उतर सोखे। मूत पलिती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। पुनी पापी आखण नाहे कर करना लिख लै जा।

कोए विण गुण कीते भगत ना होए। सो अस्त आथ बाणी बरमाओ, सत सोहाण सदा मन चाओ। कवण सो वेला वखत कवण, कवण थित कवण वार। कवण से रुति माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह न कोई। जा करता सर ठीक कौल साजे, आपे जाने सोई। केव करे आखा केव सालाही, क्यों वरने केव जाना। नानक आखण सब को आखै, एक दू एक स्याणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जे को आपौ जाणै, अकै गया ना सोहै। पाताला पाताल लाखो आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके। वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा। असलो एक तात, लिखा होए ता लिखिया, लिखै होए विनास। नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप। सालाही सालाहे एती सुरत ना पाईया। नदियां अतै वाह पवै, समुंद न जानिया है। समुंद साह सुल्तान, गिरहा सेती माल तन। कीड़ी तुल ना होवनी, जेत समन होना विसरा है। अंत न सिफती कहण न अंत, अंत न करण देण न अंत। अंत न वेखण सुनण न अंत, अंत न जपै क्या मन मंत। अंत न जपै कीता आकार, अंत न जपै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे, ताकि अंत न पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोए, बहुता कहिया बहुता होए। वड्डा साहेब ऊचा थाओ, ऊचे उपर ऊचा नाओ। एवड ऊचा होवै कोए, तिस ऊचे कौ जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया न जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगा है जोद अपार, किते आगणत नहीं विचार। किते खाप तुट है वेकार, किते लै लै मुकर पाहे। किते मूरख खाही खाहे, किते आ दुख भूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार, बंद खलासी पाणै होए। होर आख ना सकै कोए, जे को खाए को आखण पाए। ओह जाणै जेतिया मोहे खाए, आपे जाण आपे दे। आखह से पे के ही के, जिसनो बख से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साह, अमुल गुण अमुल वापार। अमुल वापारिये अमुल भंडार, अमुल आवह अमुल लै जाहे। अमुल पाए अमुला समाहे, अमुल धर्म अमुल दीबाण। अमुल तुल अमुल परवान, अमुल बखसीस अमुल निसान। अमुल कर्म अमुल फुरमान, अमुलो अमुल आखिया न जाए। आख आख रहे लिबलाए, आख है वेद पाठ पुराण। आख है पढ़े कर है वख्याण। आख है बरमे आख है इंद, आख है गोपी तय गोविंद। आख है ईसर आख है सिद, आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते कीते होर करे, ता आख न सक है केई के। जे वड पावै ते वड होए, नानक जाने साचा सोए। जे को आखै बोल विगाड़, ता लिखिया सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे। केते राग परि स्यों कहियन, केते गावण हारे। गावै तुहनो पौण पाणी बैसंत्र, गावै राजा धर्म दुआरे। गावह चित गुपत लिख जाण है, लिख लिख धर्म विचारे।
गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सोवारी गावै इंद इंदा सुन बैठे देवतया दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा माश पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ साठ तीरथ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गाव है जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जीव तिस दी वडियाई।

मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साद संयोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबान जेव ते सुपावै तिव चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उना नदर न आवै बहुता एहो वेडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार कर

उपमा महान। इंद्रान इंद्र, बालान बाल, रंकान रंक, कालान काल। अनुभूत अंग, अपा अपंग, गत मित अपार, गुणगन उदार, मुनगन प्रणाम, नृपय निकाम, आत दूत प्रचंड, मित गत अखंड। आलिस्य कर्म, अदृश्य धर्म, सर्वापरणाढ्य अंडंड बाढ्य, चाचरी छंद त्वा प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निरनामे अकामे, भुजंग प्रयात छंद। चतर चक्र करता, चतर चक्र हरता, चतर चक्र दाने, चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती, चतर चक्र भारती, चतर चक्र पाले, चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे, चतर चक्र वासे, चतर चक्र माने, चतर चक्र दाने, चाचरी छंद। न सत्र न मित्र, न परम न पितर, न कर्म न काय, अजन्म अजाय। न चित्र न मित्र, परि है पवित्र, प्रतिशय अधिशय अदृश्य अकृशय। भगवती छंद त्वा प्रसाद कथते। के आशिज देसै, के अभिज पेसै, के अगंज करमै, के अपंज भरमै, के अभिज लोकै, के आदित सोकै, के अवतूत वरणै, के विभूत करणै, के राजं प्रभाहै, के धर्मं तुजाहै, के अशोक वरणै, के सर्वा आभरणै, के जगतं कृति हैं, के शत्रं क्षत्रि हैं, के ब्रह्मं स्वरूपे, के अनपाओ अनुपै, के आद अदेव हैं, के आप अपेव हैं, के चित्रं बहीने, के एक है अधीन है, के रोजी रजा कह रही मेरे हक है, के पाक बैब हैं, के गैबुल गैब हैं, के अफबुल गुनाह हैं, के शाहान शाह हैं, के कारण कुनिंद हैं, के रोजी दहन दह, के राज करहीम है, के कर्मं करीम है, के सर्वं कली हैं, के सर्वं दली हैं, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र दान्य है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहु, के सर्वत्र पाहु, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता है, के सर्वत्र गंता है, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र भूख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य है, सदैव प्रधान है, के सर्वत्र जाप्य है, के सर्वत्र थाप्य है, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फही में, के आकल अला में, के साहेब कला में, के हुसनल वजू हैं, तमामुल रजू हैं, हमें सुल सलाम में, सलीखत मुदा में, गनीमल सिकस्त है, गरीब उल परसत है, बिलंदुल मकान है, जमीन अल जमान है, तमीज उल तमाम में, रजू अल निधान है, हरीफ अल अजीम है, रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग हैं, अभेद हैं, अपंग हैं, अजीज उल निवाज हैं, गनीमुल खिराज हैं, निरकुत स्वरूप हैं, त्रिमुक्त बेपूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुजुगत सुदा हैं, सदैवं स्वरूप हैं, अभेदी अनूप हैं, समस्तु पराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तु सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे, अनाद स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिभंगी त्रिकामे, त्रिभृगं त्रिभादे, अगंजे अगादे, शुभं सर्वभागे, सुसर्वा अनुरागे, त्रिभुगत स्वरूप हैं, अछेज हैं, अछूत हैं, किनर्कं प्रणाश हैं, कृतियुल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, बेभोगत स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, बेभोगत प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, परजुगत अनूप हैं, चाचरी छंद। अपांग है, अनंग है, अपेक है, अलेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेक है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है। चरपट छंद त्व प्रसाद। सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हरता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं प्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल छंद त्व प्रसाद।
नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमातं प्रमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमें सो सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी दहंद हैं के राजक रहंद हैं क्रीमुल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं ग्रीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सरबुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमल कमाल है के जोरत जमाल है के अचलम प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलम अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार छंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर आगंजो हर नर प्रपांजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनाश मुनमन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपारो गत मित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनाश त्रित धर तुरासु आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंश जुगात आज जिना बात अनचान जुगात अनरंज बात अनटट भंडार अनटट अपार अडीट कर्म अतटीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्वा प्रसाद करुणालय है अर्कालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के प्रण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंपर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपाथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खाड़कायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है पवकंजन है अरेगंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कर्ता कर हैं हरता हर हैं परमात्म हैं सर्वात्म हैं आत्म बस हैं जस के जस हैं भुजंग प्रयात छंदो नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांस रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री शांत अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपाखो अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद
नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तु निवासे निरकामंग बेभूते समस्तु स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग बेभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब बेभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवें तुआ प्रसाद सोइए श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरे उकार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत सीस न जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूप तो अंत को न गही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जात तार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाहा दुरंत दुबासु साज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान जलेंगे वीर अपार बड़े परयार अब चरय सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचुक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक छपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराथप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नार श्री पत के प्रस हैं पाग ते नार फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिये सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो साच कहो सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा कौ सीस नेवायो को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पाश को मिरतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जयो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चेत की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संग्रिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा
तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हू जो सदा हमारे पछा, श्री अस तुझ जू करे हौ रक्षा। राख लेहो मोहे राख न हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दा सुकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर प्रशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करक करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही कूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, ओत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग्रो। दुष्ट जिते उठवत उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवा मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद सिद्ध घर मो सब होई, दुष्ट शाह शवाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्व ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस तुझ जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत् काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सह व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट ना, तिन नर के रहाय। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस पुन तीन कहे जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा, तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा। सोइया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तोहे बखान्यो। दोहरा सकल द्वार कौ शाट कह, गहे तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आसु, गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार कौशाट कह, गहे तुहारो द्वार।
बाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्द उता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सुवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किश है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार ओ साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब को जाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो। जिस दियां ए वडियाइया कहे नानक सुनो हो संतो हो शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे। कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंटुक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देहन माणी देहन माणी लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया। तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया। इस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवै बाजहो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सवारिया। अंदर रहो जिनका मोह तुता तिनका शब्द सचै सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया। बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै तां सो जन दे जिसनु होर क्या करै वेचारिया। एक भरम भूले फिरे दह देसो एक नाम लाग सवारिया। गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावे। कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकथ की करै कहानी करह कहानी अकथ केरी केत द्वारे पाई है। तान मान तान सब सौंप गुर कौ हुक्म मने है पाई है। हुक्म मने हो गुरु कीरा गाव हो सची बाणी। कहे नानक सुनो हो संतो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतु ना पाया किने तेरा अपना आप तू जानहे। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणाए। आख है ता वेखा है सब तू है जिन जगत उपाया। कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए एक वेख पर सुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां हकीरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्ने हो तिखी वालो होने की एत मार्ग जाना।
ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾ ਹੈ ਤਿਵ ਚੱਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਹੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆ ਵਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾ ਵਹੇ ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸ਼ਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਿਰੈ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਬਾਈਆ ਕਹਿਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਧੋਵਾਓ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਇਹ ਸਹਿਸਾ ਇਵ ਜਾਏ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਰੋਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਹੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿਨ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਹ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੇ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣ ਜਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸੰਭਾਲੇ।

लख पुनः प्रबाण लख तपूप तीर्था सहयोग बेबाण लख सूर्तन संग्राम रण में छुट्टे प्राण लख सुन लज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।

0: जति सदा वह जुक्त न जाने छड़ बह करबार सबको पूरा पे हो वह घट ना कोई आख पत परवाना पिछे पाइये नानक तो लिया जापे महला पहला
1: सबजग नानक सच्चा विख सोए सब निशाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर करम जिना कुदुत पाया।

संध्यावादं शिलपूजित बगल समाधं मुक्तूट विवक्षण सारं त्रैपाल त्याल विचारं गलमाला तिलक ललाटं दो तोती वस्त्र पाटं जय जानस बर्मं कर्मं सब हो कुट निश्चो कर्मं कौ नानक ने चौत्यावै

मथे टिका तेर धोती कखाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रवान मलेच धान ले पूजे प्राण।

ठंडा फिटता है, तन फिटता है, फेट करेन मन जूठे चुरी परेन, पावना निक सच ते आई है, सुच होवे तो सच।

साहिब सेती हुक्म ना चला कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला।

तन मन धन सब तिसका सोई सुगण सो जानी। गुरु सवारी संगत जी प्यार सहित रसना पवित्र करो, रसना द्वारे आखो जी वाहे गुरु जी का वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग पतित पावन गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी दसां ही पातशाहियां दी जगदी जोत आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु बाबा जी दी हजूरी अंदर सतगुरु जी दी छत्र छाया हेठ गुरु सवारी संगत जी सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त होई है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी हजूरी अंदर सज करके सतगुरु जी दे दीदने दीदार प्राप्त करके गुरु सवारे गुरु के कीर्तनिया पासों आसा जी की वार दे कीर्तन बहुत ही प्यार विच आप जिया ने सरवण कीते ने वड्डिया भागा वाले ओ जिस वेले गुरु सवारे गुरु के कीर्तनिये सिंह साहिबान जी समाप्ति वाले आ रहे सन उस वेले गुरमुखा ने एक आप जिया नु श्री मान वेद ब्यास भाई साहब जी भाई गुरुदास साहब जी की पौड़ी सरवण करवा दिती। जांदियां जांदियां उस पौड़ी विच किन्नी क गंभीरता है किन्नी क कृपा है। श्री मान भाई गुरुदास साहब जी कहिंदे ने जो गुरु के कीर्तन ने आप जिया नु सरवण करवाई है दो चार मिनट लै लवां जिस वेले

अनदिन अनद हुवै विडभागी लै गुरपूरै हर लाहा रहाओ। आपे गोपी कान है प्यारा बने आपे गौ चराहा, आपे सावल सुंदरा प्यारा आपे वंश वजाहा। कुबलिया पीड़ आप मराए दा प्यारा कर बालक रूप पचाहा, आप अखाड़ा पाए दा प्यारा कर विखे आप चो जाहा। कर बालक रूप उपाय दा प्यारा चंडुर कंस केस माराहा, आपे ही बल आप है प्यारा बल पन्ने मूर्ख मुगदाहा। सब आपे जगत उपाय दा प्यारा वस आपे जुगत हथाहा, गल जेवड़ी आपे पाइंदा प्यारा ज्यों प्रभ खिंचै त्यों जाहा। जो गर्वै सो पच्चसी प्यारे जप नानक भगत समाहा। सो रठ महला चौथा दो तुके अनिक जन्म विछड़े दुख पाया, मनमुख कर्म करै अहंकारी साधु परसत ही प्रभ पाया। गोबिंद शरण तुम्हारी गोबिंद प्रीत लगी अत प्यारी, जब सतसंग भय साधु जन हृदय मिलया शांत मुरारी। रहा तू हृदय गुप्त वसह दिन राती तेरा भाव न बुझै गुवारी, सतगुर पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया गुण गावै गुण विचारी। गुरमुख प्रगास भया सांत आई दुर्मत बुद्ध निवारी, आत्म ब्रह्म चीन सुख पाया सतसंगत पुरख तुम्हारी। पुरख है पुरख मिलया गुर पाया जिनको कृपा पही तुम्हारी, नानक अतुल सहज सुख पाया अनदिन जागत रहे बनवारी। सोरठ महला चौथा हार स्यों प्रीत अंतर मन बिधिया हर बिन रहन न जाई, ज्यों मछली बिन नीरै बिन सह त्यों नामै बिन मर जाई।

ही रहाओ। ज्यों चात्रिक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाई। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाहे सुभाई। मनमुख भूखे दह दिस डोलै, बिन नावै दुख पाई। जन्म मरै फिर जूनी आवै, दरगह मिलै सजाई। कृपा करह ता हर गुण गावै, हर रस अंतर पाई। नानक दीन दयाल पहे है, तृष्णा शब्द बुझाई। सोरठ महला चौथा पंचपदा।

जिन एकंकार आधार सोई सच आराधना पाई जिसते सब किछ होए गुर पूरै जानाया पाई तिस बिन अवर न कोई रहाउ।

साचा अगम तनी, आवण जान चुकई पाई झूठी दुनी मणि, गुरमुख कोट उधार दा पाई देनावै एक कणी, सिमरत सास्त सुध आ भाई विन सतगुर भरम न जाए, अनिक कर्म कर थाके आ भाई फिर बंधन पाए, चारे कुंडा सोधियां पाई विन सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया भाई हर हर नाम त्याए, सच सदा है निर्मला पाई निर्मल साचे सोए, नदर करे जिसे आपनी पाई तिस परापत होए, कोट मदे जन पाई है पाई विरला कोई कोए, नानक रत्ता सच नाम पाई सुन मन तन निर्मल होए, सोरठ महला पंजवां दो तुके, जो लो पाओ अपाओ एहो मानै तौलो मिलन दूराई, आन अपना करत बिचारा तौलो बीच बिखाई, माधवे ऐसी देह बुझाई सेवो साध गहूं कूट चरना, नह बिसरे मोहत चसाई रहाउ, रेमन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसे

सोग न व्यापै आप न तापै साध संगत बुद्ध पाई साकत का बकना यों जानो जैसे पवन चुलाई कोट परात अच्छा दियो इहो मन कहना कछु न जाई जन नानक दीन शरण आयो प्रभ सब लिखा रखो उठाई सोरट महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही अंत की बार को खरा न होसी सब मिथ्या असने ही रे नार काहे पपोर हो देही उड़ जाएगो तुम बादरो एक पाजो हो राम स्नेही रहा तीन संज्ञा कर देही कीनी जल कुकर पसमे ही होए आमरो ग्रह में बैठा करण कारण बिसरोही अनिक पात कर मणिये साजे काचे ताग परोही टूट जाएगो सूत बापरो फिर पाचे पछतोही जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावो दिन रहने ही जन नानक प्रभ कृपा तारी मैं सतगुर ऊट गहे ही सोरठ महला पंजवा गुर पूरा पेट्यो वडभागी मने भया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा अपने सतगुर कै बलिहार आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहा अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा निर्भव भये गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी हो बनहारा कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा

जिने अपना भरम गवाता किसके भाणे कोई न भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ।

पिन लाती, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री पड़या, ताकू सर्व परगासा, अज्ञान अंधेर सू जिस नाही, बहुड़ बहुड़ परमाता, सुन बेनंती स्वामी अपने, नानक एहो सुख मांगे, जह कीर्तन तेरा साधु गाव है, तह मेरा मन लागे, सोरठ महला पंजवां।

अगमय अगोचर सद अविनाशी शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी ओट संतन की आही, गूढ़त मोह ग्रह अंधकूप मह नानक लिहु निबाही। छोरठ महल्ला पंजवां घर पहला

सो कर्त कर्म है, सो कर्म करत है प्राणी। जैसी तुम लिख पाई, सेवक को तुम सेवा दिनी। दर्शन देख अघाई, सर्व निरंतर तुम है समाने। जाको तुझ आप बुझाई, गुर प्रसाद मिट्यो अज्ञाना। प्रगट भए सब ठाई, सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, सोई पुरख सुभाई। कहो नानक जिस भए दयाला, ताकाओ मन ते बिसर न जाय। सोरठ महला पंजवा, सगल समग्री

कोड़क को न पहुँचे। मेरे मन साध शरण छुटकारा, बिन गुर पूरे जन्म मरण न रही, फिर आवत बारो बारा रहा। ओ जो भरम भुलावा कहियत, तिन मह उर्जो सगल संसारा। पूरन भगत पुरख स्वामी का, सर्ब थोक ते न्यारा। निंदो नाही काहू बातै, इहो खसम का किया। जाको कृपा करी प्रभ मेरे, मेरे साथ संगत नाओ लिया।

तत विचारा सोरठ महला पंजवा। खोजत खोजत खोज विचारयो राम नाम तत्सारा, किलबिख काटे निमुख अराध्या, गुरमुख पार उतारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी राव। मुकत भुगत जुगत सच

पूरन पुरख वेदाता, श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय ध्याइय सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते वृथा न कोई, वड्डे भागरथ।

देहो उपदेशा, मां न की जय शरण परि जय, करे सो भला मनाइय, सुन मीता जीव पिंड सब तन अर्पी जय, यो दर्शन हर जीव पाइय। भयो

त्यों हर रंग रचे ज्ञानी, हर जन कौ यही सुहावै, देख निकट कर सेवा सतगुर, हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ। अमलन स्यों अमली लपटायो, भूमन भूम प्यारी, खीर संग बारिक है लीना, प्रभु संत ऐसे हितकारी। विद्या मैं विद्वंसी रचिया, नैन देख सुख पावै, ऐसे जैसे रसना साध लुभानी, त्यों हर जन हर गुण गावै।

अंतरजामी सोरठ महल्ला पंजवा। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर

पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दे साराओ। तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान देहो मेहरवाना तुम कर

रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अभिमाना तामह सुख नहीं पाइए। ओ होरेन तू सगल की मेरे मन तौ आनंद मंगल सुख पाइए।

मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आज जो बारी साडा भेक है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सन नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जो बाणी साडी साडी कपट खोल दी है, कपाट खोल दी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पिन्ने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विच्चों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हैं, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उन्हां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तो अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दियां पैड़ां बाणी दे स्टेप्स दे उते चल के। नानक अमृत मने मागे, बारी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह

0: नानक ज्योतिष भावे सो वर्तिया
1: विष्णु विष्णु पहले जमा जन दुनिया से आया